उज़्म नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

जो सच है मेरा वो सवेरे का सपना है तू. A beautiful song wasted on a film that barely saw the light of day. Atif Aslam, Tube Light. मैं अगर नजारों से चुरा के लाऊं रंगतें, मजारों से चुरा के लाऊं बरकतें, किताबों से चुरा के लाऊं कायदे, हिसाबों से चुरा के लाऊं फायदे. उफ़.

9:50 on a Tuesday, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. रैपिंग अप द आवर विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम गाइड. जीने की तमन्ना, मरने का इरादा, जहां भी आप सुन रहे हैं. होप यू हैविंग अ ब्यूटीफुल डे. गुड मॉर्निंग.

0: Taken from the film Chalte Chalte, Abhijit and Alka Yagnik on the vocals. Toba, tumhare ye ishare. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूसडे की सुबह शबनम साही के साथ. विजय जी, थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल मैसेज. आप कहते हैं मिस्ड यू यस्टरडे. शबनम जी, व्हाट ओनली यस्टरडे, व्हाट अबाउट थर्सडे एंड फ्राइडे लास्ट वीक? Don't answer that.
1: Listener's choice brought to you by Colors TV.
2: अगर आप उसे लड़खड़ाने भी नहीं देंगे तो वो अपने आप को संभालना कैसे सीखेगी?
3: वो बाहर की नुकीली दुनिया के लिए नहीं तैयार है.
4: शायद समझ नहीं आएगी पर याद रह जाएगी.
0: Follow Juhi's inspiring journey of justice, courage and dreams in Juhi Mui every Monday to Friday 7:30 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. It is a season of remixes and refixes. ऐसा ही देख के मुझे लग रहा है. And the next song to be massacred, na? You decide. Buhe Bariyan. Pass ya fail, ye faisla aapko.

0: Adnan Sami and Asha Bhosle on the vocals. Kabhi to nazar milao, kabhi to kareeb aao, jo nahi kaha hai, kabhi to samajh bhi jao. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूसडे की सुबह 25 अगस्त की सुबह शबनम साही के साथ. आई जस्ट रियलाइज्ड दिस फ्राइडे इज द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ राइट व्हिच मींस ऑन दिस शो वी आर गोइंग ऑल रिक्वेस्ट. हाउ क्विकली डिड दैट कम अराउंड गुडनेस मी. नेक्स्ट वीक वी आर इन टू द 9th मंथ ऑफ द ईयर सेप्टेम्बर. Anil in Kingsbury, thank you for that. Aap kehte hain, I left my heart in San Francisco. Was a song by Tony Bennett. I knew it. My contemporary. Just kidding. Sunrise Radio par is ghante ka. Listener's choice, of course.
1: Listener's choice, brought to you by Colors TV.
2: अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे. अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं. आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है.
3: शिकवे, शिकायतें तुमसे.
0: Watch Sehet Hone Ko Hai Monday to Friday 9 PM on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Sunrise Radio par is ghante ka hamara hit of the hour, my favorite version of Ishq Nibhavan De from Chand Mera Dil, Neeti Mohan. Amitabh Bhattacharya ke bol, Amitabh Bhattacharya ko kai log इस जेनरेशन के गुलजार साहब या जावेद साहब, जावेद अख्तर साहब भी मानते हैं.

0: Time Check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: 11:50 on a Tuesday. You've been listening to Shabnam Sahi on Sunrise. My time is almost up. Our lovely Kavita is next. जहां भी आप सुन रहे हैं जो भी इस वक्त कर रहे हैं होप यू हैविंग अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे कल सुबह मिलते हैं नाइस एंड अर्ली एट 9 AM डोंट बी लेट

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: Tickets available now on Ticketmaster and AXS. In association with Berico Food Distribution Limited and PRC Direct. Don't miss your chance to witness the voice that is Jubin Nautiyal. Radio partner Sunrise Radio.
1: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
2: दिस इज सनराइज, द यूकेज़ बिगेस्ट